0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब कुछ मजीद खबरें। ईरान के मरहूम रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई के तीन बेटों ने इतवार को दारुलहुकूमत तेहरान में उनकी आखिरी रसूमात के दूसरे दिन शिरकत की, लेकिन ज़राए इब्लाग के इदारों ने उनके बेटे मुश्तबा खामनाई के बारे में कोई खबर नहीं दी, जो अपने वालिद के बाद मुल्की रहबर आला के मनसब पर फाइज हुए हैं। सरकारी टेलीविजन ने तीनों बेटों को रोते हुए दिखाया जब उनके वालिद का ताबूत जनाजे के मकाम पर ले जाया गया। फिर तीनों ने मिलकर ताबूत के पास नमाज अदा की। अब तवज्जो इस बात पर है कि आया मुश्तबा जुमेरात को अपने वालिद की तदफीन के मौके पर अवाम के सामने आएंगे या नहीं। चीन की वजारत दिफा ने इतवार को कहा कि मुल्क की बहरिया इस माह रूसी बहरिया के साथ चीन के मशरकी शहर चिंगदाओ के करीब बहरी और फजाई हदूद में मुश्तरक मश्क करेगी। वजारत ने कहा कि मश्क का मकसद मुश्तरक तौर पर सिक्योरिटी चैलेंजेस का जवाब देना और इलाकाई अमन इस्तेकाम की हिफाजत करना है। वजारत ने कहा कि मश्क के बाद दोनों अतराफ की कुछ अफवाज बहरुल काहिल के मुतल्लिका इलाकों में मुश्तरक समंदरी गश्त करेंगी। सरकारी शिनहुआ न्यूज एजेंसी का कहना है कि मश्क में हिस्सा लेने वाले जहाजों में चीन के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और एक आबदोज के अलावा एक रूसी गाइडेड मिसाइल क्रूजर और एक आबदोज शामिल हैं। दोनों फरीक दूसरे तरबियती मंजरनामों के अलावा मुश्तरका जासूसी मिसाइल दिफा और मैरीटाइम स्ट्राइक ऑप्शंस माफ कीजिएगा ऑपरेशंस करेंगे। दोनों अतराफ के अहलकार मुतल्लिका बहरी जहाजों के दौरों का भी एहतमाम करेंगे। दोनों ममालिक 2012 से तकरीबन हर साल मुश्तरका मशकें करते आए हैं। इतवार के रोज वस्ती जापान के शिजुओका प्रीफेक्चर के एक गर्म चश्मा तफरी शहर इतो में मौसम गर्मा के आगाज के एक मुनफरिद इवेंट वॉश टब रेस का इनेकाद किया गया। ये इवेंट हर साल तकरीबन इन्हीं दिनों दरियाए इतो ओकावा पर मुनक़िद होता है। रेस में मकामी अफराद और सयाहों समेत तकरीबन 270 अफराद ने हिस्सा लिया। कुछ शुरका ने आम मलबूसात पहने हुए थे जबकि दीगर मौसम गर्मा के किमोनों में मलबूस थे जिसे युकाता कहा जाता है। तकरीबन 1 मीटर कुतर के टबों में बैठे हुए शुरका इब्तदाई इशारा मिलने पर रवाना हुए और चावल के बड़े पतीलों से मिलते जुलते टबों को लकड़ी के बड़े चप्पुओं के साथ चलाते हुए 400 मीटर नीचे की तरफ फिनिश लाइन तक गए। जब कुछ शुरका अपना तवाजुन खो बैठे और उलट गए, फिर अपने टबों में वापस चढ़ने के लिए जिद्दोजहद करते रहे तो तमाशाइयों ने उन्हें दाद दी।
1: अब आज की चंद अहम खबरों की सुर्खियां समाप्त।